0: पर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हु कुचरता दग ज्वानको पवख बानी गम उनकले लेशी नो पो रारवान वख की दग ज्वानके स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बानी द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम ची द ऑयली स्किन और द एक्नी द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीस पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्मई और यवाज दाना द दग दानो चकम दागु नदी अगा हम प मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सैलिसिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और दानू दागुना प मुकमल तोगबानी खत्मई नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: We'll be back right after the commercial break।
3: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें।
4: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are

0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हो, कुचर त दग ज्वानको पवख बाने गम उनकल लेशी न प रारवान वक की दग ज्वानके स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नी द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नी पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और यवाज दाना द दग दानो चकम दागो नदी अगर हम प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दाने और दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो सलामना संग मंगल जी सहलात वाकिया थी ठीक ठाक ये खैर खरी थी यकीन तस्बा ठीक ठाक ये खैर खरी सर भाई दिलबर रेडियो गग दिलबर रेडियो आवाज और ये दो पारा योजना मनाना मेहरबान शुक्रिया तशकर बी सी आर चिता सो मासरा मौजूदी यानी कि ताहिर जमान सर मौजूदी जी ताहिर जमान गग यानी कि ताहिर जमान आवाज और संगम चल दीजिए सहालात वाकियाती ठीक हुई गना खुई गना कखनेन बस तास्ता फर्ज गमदन संभल्ला दुआ गाने ची अल्लाह पाक मो खुशहाल सोखल साथ जी अल्लाह पाक मो पसीत बन कमे रूह जोड़ साता आमीन सुम आमीन नवी और इदुन की सिंग दी अदीन एलवज गमदन नो जड़ो दज गमदन मंग लका हेरोली शो जड़ा और इदुन किच गमदन मंग चरम चरम चरम च गमदन नशी हेरोले आओ खजनाब ड्राइविंग को गाड़ी चलावे नो खबर खोल चे ब्राय मेहरबानी ख्याल गाड़ी बन चलावे कोशिश भी कहो चे ट्रैफिक सिग्नल दी ख्याल बसातेसो आओ सुमरा पैदा खलगा मतलब पसड़ करवा कहना दी खल को बहुत गमदन तस्बा ख्याल साथे तर यवे पुरज गमदन जबतासर मौजूद बेम जी तासुरातले शे प्रोग्राम के शामिल दे शे और प्रोग्राम ता सिंह बराजी 0938-238-495 पर दी नंबर तासबा कांटेक्ट कोई एंड दीन अलावा कसोक मैसेज कॉल गार्ड नो मैसेजेस हम तास कॉल शे जी अपल मैसेज नमुंग थारा ली गले शे सही शो गाना ओके शो जी खजना अब दस कार दे ची यो ट्रैक प्रोग्राम के शामिल हो ट्रैक नंबर वापस राजू इस चरता लाना शे मासरा यानी ताहिर समान सरोसे जी ओके

भैया आप मुझको ये बताओ कि आपने यार ये क्वेश्चन भी जो है ना, ये सवाल भी पहले जैसा सवाल है, और इतने मतलब आप मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं, इतने मतलब डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करते हैं कि मैं आप लोगों को क्या

अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिंह जी, खी ठीक ठाक ही है। शो डेर मजेदार दे जी। हकियार बाजावड़े जी कमदन मुंसर प्रोग्राम के शामिल शु जी, मनाना शुक्रिया। आयशा फ्रॉम सॉबी क्यूट आयजता और अनायता जी कमदन सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम।

0: Salam bhai, welcome. Salam, how are you? Show is very nice and
1: jiti
0: masra walla
1: halu show
0: box kam den package na ho number ran kam den ostas so good but shivji munahil masra program sham show so bhai na salam to you and puro ridun kuta salam na ji ostas ta dear ja salam na shukriya ji yo bina message agle de di ki sirf salam likh li ji salam bhai walikum salam मिक्स लैंग्वेज यूज करो मजा करती है जी अलीना हमारे साथ दे रही है छोटा लाहौर से बहुत बहुत शुक्रिया वुड लाहौर से हमारे साथ दिया आपने

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम

पाखजान शिस्त्र गुलूना पाने पाने पाखजान शिस्त्र गुलूना पाने पाने हसलान खलक पैदा त्रिकड़ी हसीला हसलान खलक पैदा त्रिकड़ी हसीला कम जरफा किताबुना पाने पाने

तात का हर शिडिर जुड़ना पाने पाने है खजान शीस्त्र गुलूना पाने पाने खजान शीस्त्र गुलूना पाने पाने दाख

0: 9 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजुनना ना उम्मीद शुरू बीमारान द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्ता सुपखार सवाबई की प्रानिस्त सुविधा के तासु के हम सुख पर पे खबर
1: हेलो हेलो हेलो हेलो

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.com।